0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अच्छा टीचर साथ उठो, अच्छा टीचर सभी स्वयं भी सफल करो और सफल
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो, निश्चय का पर्तक्य परवान है, रूहानी नशा हमें बने

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधन नहीं है और काम को तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर? साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, बड़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का फल है। लेकिन वृद्धि की बात ऐसे तो नहीं कि साधन की प्रवृत्ति में फस्तों नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे, शूस करते हुए उनकी परवाह में नहीं है। न्यारे बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी आवश्यकता है विश्व में अति में जा रही है, तो अभी सच्ची वैराग्य वृत्ति चाहिए और वो वायुमंडल बनाने वाले आप पहले स्वयं में फिर विश्व।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो, जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्व स्थिति और सेवा दोनों कंबाइन, परसेंटेज में कोई कमी नहीं हो, कभी सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, कभी स्व की परसेंटेज ज्यादा है, नहीं बैलेंस सदा आपके बैलेंस द्वारा विश्व के आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अभी ब्लेसिंग चाहिए विश्व की आत्माओं को, मेहनत नहीं चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए। तो आपका बैलेंस
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण नहीं होता है।

是飞机，八哥，给他拿八哥。可惜我家奶奶的那个，可惜嘞。

जितना

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का ना, साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना, अकेला तो नहीं अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं, इसलिए छोड़ना नहीं। कोई भी बात आवे आप दिल से बोलो, बाबा मेरा बाबा, बाबा हंस रहे, आपकी समस्या को हल कर देंगे, दिल से बोलना, बाबा ये बात है, बाबा ये करो, बाबा ये, बाप बंदा हुआ है, लेकिन दिल से मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे यार

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Lakshya।

0: दीवार बच्चे अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ ये टीवी तो सिर्फ पैर का शिकल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देख तो खुश हो जाती है, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियां आ गई। सब शिव की शक्तियां है, पांडव भी शक्तियां हो, फिर शक्तियां शिव बाप को प्रतिज्ञ करेंगे। अभी छोटे छोटे खेल बाल बंद करो, आप वान परस्त स्थिति को इमर्ज करो। बाप दादा सभी बच्चों को इस समय, बाप दादा के आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे और ये स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय संकल्प सेवा संबंध संपर्क में सने संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ ये चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब ये चेक करो सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितने आत्माओं को किसी भी कार्य से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Nézzük, Teodora! Szakasztó! Jesse!

चीजों को परिवर्तन

So good shot.

अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा को शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। मनसा सेवा जैसे वाचा सेवा का विस्तार किए, वैसे मनसा

Yeah, fellow.

varsa muhtesim

Sightseeing.

0: साइट सीन देखने के लिए साकी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस मास्टर

ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं।

जाए।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, किया कि कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं। जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना, इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक खाना पी करो इसकी अपने

इसको

habis kok apa sesat macam marah.

Listen.

Nimbolo. Mira todo abajo.

Bye.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

真的。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Dancing Queen Mushroom.

0: Oye, Doña Mimpi, ¿qué dije? Peli soy yo, Fercaro. Teito. Yo soy quien negarte.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये ट्रायल लो पाता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप से मदद करूं, धन से मन से धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही कर सकता, बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम बिजी रहे, ये भी होते हैं कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना क्या है, करना या ना करना की बात है, पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। इसे आराम से घर में बैठो, जब होंगे तब से होगा करें, तो ये भिन्न भिन्न विकार का विकारों का रायल रूप है, और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया, लेकिन आप अपमान आ गया या अपने मान्यता का, हमारी मान्यता उसका पाना है, तो जहां एक विकार होता है ना,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ। याद आ रहा है परम धाम, अनादि काल से Sup.

chamak. Ruhani reality. Purity ki chamak nari. For me.

रूहानी रायलिटी।

ब्यूटी की पर्सनालिटी। Stop.

就不见Chitrabanati。

0: सारे क्लब में ये रूहानी रियलिटी चलती रही है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों को पता है, पहले पहले जब बच्चे सेवा में गई तो ब्रह्मा कुमारियों को सफेद साड़ियां देख करके वो दरवाजा बंद
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंधा हुआ है देने के लिए। छत्तीस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बेफिक्र बच्चन,
2: बेफिक्र
1: बाप दादा,
2: बाप दादा
1: सदा ही बेफिक्र बच्चा करो। बेफिक्र
3: फिक्र का है था पापा बैठे,
1: कारण क्या है, बेफिक्र क्यों है,
2: कल क्या है, ये फिक्र क्यों है। दिल बड़ी है,
4: बेफिक्र क्यों है, क्योंकि दिल बड़ी है।
1: जहाँ दिल बड़ी होती है ना, तो जो होना है वो हो जाता है, जो आना है वो आ जाता है।
3: तो दिल बड़ी कैसे हुई है?
5: बड़ा बाबा, बड़ी दिल, बड़ा परिवार।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बनाना राई भी नहीं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुछ भी दे, बात दुआ भी दे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सत्युग में या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव व जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते।

रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मधुबन निवासी अर्थात गरम में मधुरता और वृत्ति में स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों और याद के पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने तो कम से कम चार घंटे से होना तो ज्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम चार घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को समझो विजय तो बंद कर
4: जाएंगे तो बहुत।
3: और कितना सामान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं। मधुबन वाला है, मधुबन वाला है तो इतना अपना सामान सदा
5: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: तो आज से देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी उठा रहे हैं, पीछे वाले हाथ हिलाओ। Awesome.

विश्व की परिवर्तन

shit.

Bobby. Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चेता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती। हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

Jay.

जैसे समय आगे बढ़ा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वर्तमान समय

Sss.

0: सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता ही नहीं। जो बाप ने किया वो फॉलो फादर सहजना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखाए। सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही। और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेलाया छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
3: भाइयों को बुला रहे
2: हैं। दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ, जो लक्ष्य रखे दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान वासना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन। ऐसा वर्तक के स्वरूप देख, फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: चले जाए नहीं।

जल्दी जल्दी करो ऐसे मशीन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: बेहिश्ता स्वरूप में रहना है, इसको ही कहा जाता है दीवर पुरुष।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

ऐसे चारों ओर के परिस्थितियों के बीच में

0: cosa, Teo. Easy practice. So you have me.
1: मन बुद्धि को

drummer, Master Sarva Shaktivan स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्तिवान

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोग छोड़ने में तो चाहे भाई चाहे बहने, जो पीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं दे। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सपने में बने हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: See.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संस्कार स्वभाव का संस्कार

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप की मदद तो है लेकिन समय पड़ने में।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते संबंध संपर्क मिला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की अशांति की बीच बीच में भी बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने। कभी कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते, बाप के तरफ कोई भी सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता। अच्छा,
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

5G. Apa deku?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई गलती से आपके पास बुरा संकल्प आ जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आएगा तो सही, क्योंकि आपने बहुत समय बुराई को पाल के रखा है। तो देखो, पशु भी होते हैं ना, अगर पालते हैं ना तो उसको दूर भी फेंक के आते हैं फिर भी आ जाते हैं, आते हैं ना। तो मानो आपने हाथ तो उठाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन गलती से कोई कमजोरी आ जाए तो क्या करेंगे? कमजोरी लाने देंगे? देखो, इसके भी विधि बताते हैं। अगर आपके पास आपने वायदा तो किया ना, तो दे दिया ना बुराई, बुराई बाप को दे दी ना, अच्छा कोई को कोई चीज दे देती है, और फिर अगर गलती से आपके पास आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रखेंगे, रखेंगे अपने पास कि वापस करेंगे, वापस करेंगे ना। तो अगर आपके पास थोड़ी क्रोध की रेखा, लोभ की, मोह की, अपमान की गलती से आ भी जावे, क्योंकि बहुत समय लगा है, तो वापस कर देना, बाबा मेरा बाबा अपनी चीज आप संभालो, मेरी नहीं। बाप तो सागर है ना, सागर में समा जाकर आप नहीं, यूज नहीं करना, क्योंकि अमानत हो गई ना, तो अमानत में ख्यानत नहीं की जाती। बाप को दे दो, बाप आप जानो, ये जान मैं नहीं यूज करूंगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हो मिट्टी नहीं खाना, सिखाते हो ना, और बच्चा फिर मिट्टी खा लेता है ना, उसको मिट्टी अच्छी लगती है। फिर आप क्या करते हो? बार बार उसके हाथ को चुराते हो या खाने देते हो, चुराते हो ना। तो ये अपने मन को चुराना, मन में ही तो आएगा ना। तो अपने मन का मालिक बन के इस चीज को छोड़ना, ठीक है? विधि करेंगे ना, सहज हो जाएंगे। हिम्मत नहीं छोड़ना, एक कदम आपके हिम्मत का और हजार कदम बाप के मदद का है। ये अनुभव करके देखना, हिम्मत नहीं हारना, दिल शिकस्त नहीं होना। सर्वशक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने बच्चों के

अपने स्वमान

అశ్వమాన్ కిడ్నాపడే చలికే అనాది స్వరూపే

जैसे आकाश में भी कोई कोई सितारा विशेष चमकता है।

man. Is that also Theo? Abby. Awesome.

Turkey.

Sorrow Deco.

Nej, söndag.

Reprawdy są.

richtig

Sick.

Gonzayuga here.

sua mãe.

transformando.

चक्कर लगा रहे हो, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो, हाथ उठाओ जा, देखो अपना स्वमान, क्यों स्वराज अधिकारी।

जीवन में स्वयं मालिक आप बच्चों।

Chaitan. पाप से प्राप्त हो गई।

जर्नी करेंगे ना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्म जीवन की मोट सदा केयरफुल और केयरफुल मोट बदलना नहीं चाहिए। रूप में कहते हैं आज मुझे बड़ी एकांत चाहिए। क्यों चाहिए? करना सेवा या परिवार से किनारा है। और कहते हैं शांति चाहिए, एकांत चाहिए। आज मूड मेरा ऐसा है, मूड नहीं बदले करो, कारण कुछ भी हो, लेकिन आप कारण को निवारण करने वाले के कारण में आने वाले निवारण करने वाले ठीक कर क्या लिया है? कंट्रेस्टर होना कंट्रैक्ट लिया है क्या? प्रकृति के मूड भी चेंज करे, प्रकृति को भी चेंज करता है ना, तो प्रकृति परिवर्तन करने वाले अपने मूड को नहीं परिवर्तन कर सकते। मूड चेंज होती है कि नहीं? होती है, कभी कभी होती। फिर कहेंगे सागर के किनारे पर जाके बैठते, ज्ञान सागर नहीं स्थूल सागर। फॉरेनर्स ऐसे करते हैं ना, करते हैं। या कहेंगे आज पता नहीं, अकेला अकेला लगता है, तो पाप कहा कंपाइंड रूम कहा गया, अलग कर दिया। कंपाइंड से अकेले हो गए, ये प्यार, ये इसको प्यार कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार का मूड, एक होता है मूड ऑफ, वो बड़ी बात, ठीक है। मूड परिवर्तन होना ये भी ठीक, मूड ऑफ वाले बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के खेल दिखाते हैं। बाप दादा देखता है, बड़ों को बहुत खेल दिखाते हैं, या अपने साथियों को बहुत खेल दिखाते हैं। ऐसा खेलने करो, क्यों? क्यों बाप दादा का बच्चों से सभी से प्यार? बाप दादा ये नहीं चाहता कि जो विशेष निमित्त है वो बाप समान बन जाए और बाकी बने या नहीं बने। नहीं, सबको समा बनाता ही है। यही बाप दादा का प्यार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Sick.

నోటుగా.

che ci trome. Sada. Double touch. Toi pour me. Kairaji.

Que se vi.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Eva.

Sana.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्ने

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: Carol, tô bem.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है, जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथारथ सेवा नहीं, कोई ना कोई कमी है सेवा में। इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुश निमा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की, उन आत्माओं के वायुमंडल खुश हो जाए। ये सेवा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी कभी लिफ्ता बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये लेवतापन दातापन नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू प्रकाश
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

谢谢。

परिवार के प्यार।

Sí.

Poker.

एक बच्चे के प्रति। Yeah.

నిగాత్మకు. చల్ల

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे समय पर आप मूर्ति कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए। फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वो अनुभव करेंगे जैसे अभी अनुभव करती है ना, पानी मिल गया, बहुत प्यास मिटी, खाना मिल गया, टेंट मिल गया, सारा मिल गया। ऐसे अनुभव करेंगे, शांति मिल गई फरिश्तों द्वारा, शक्ति मिल गई, खुशी मिल गई। ऐसे अंतवाक अर्थात अंतम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियां देंगे, साधन देंगे। आता है अपना रूप सामने, इमर्ज करो, कितने फरिश्ते चक्कर लगा रहे, सकाश दे रही है। तब कहेंगे जो आप गीत बजाते हो ना, एक गीत बजाते हो ना, शक्तियां आ गई, शक्तियों द्वारा ही सर्वशक्तिमान स्वतः हो जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी कोई माया का संकल्प पिया वे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंचना। मन का विमान तो है ना, सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिए। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स उठो, दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। टीचर्स को साथी कहते हैं।

एक बात चाहिए, सुनाए क्या? बाप दादा चाहिए कि हर एक टीचर चेहरे से नजर आवे अंदर पुरुषार्थ होगा भी, लेकिन सूरत से आपके पाप पर तक क्यों कोई को भी ऐसे चेहरे से सेवा करने वाली बाप को प्रत्यक्ष कर ही लेगी। अब समय आ गया है बाप को अपने चेहरे

0: parte quieta. कटियना
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जितना प्यार है ना, उतना साथ में प्यार भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ो, जो बाप दादा ने कहा है, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ, वायुमंडल बनाओ, एक दो किस सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं, स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ, तो क्या करेंगे अभी? नवीनता करेंगे ना, जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना, हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति उसमें

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल, तीन नहीं लेकिन तीनों में एक है, बाकी तो सब अच्छे निमित्तों के चला रहे हैं।
2: पापा याद कर देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो बाप दादा खुश है, हाथ उठाने में होशियार सभी है। लेकिन अभी Let's

So

0: sur vos tirs. Nemet bonne oui.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ज्ञान सुनना सुनाना, तो सहज लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बहुत बेचारे दुखी है, बहुत परेशान। तो अभी रैम दिल बनो, रैम की लहर, बेहद की फैराग, फिरती द्वारा फैलो। अभी सभी वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते हैं ना, तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। वहां से ये बेहद की रैम का वायु मन

अच्छा, सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सेवाओं के और मंगोत्साह की मुबारक तो थी, बहुत अच्छा कर रही है, करते रहेंगे। लेकिन हर समय हर दिन आप वर्ल्ड सर्वन, आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वन, सर्वंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वंट, वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आजकल चाहे संसार में चाहे ब्रह्मांड संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार, मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत, मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत तो परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती, बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये होगा, आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समझ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Dealer.

Thank you.

Oh no, Corby.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: तो वह अपने तरफ

sub.

Espera.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

questions.

छोटे छोटे फिर संकल्प है, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते, इसलिए फियरत को भी कब करो, टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे, हाथ उठाओ, तो बाप दादा यही सौगात चाहते हैं फियरत को समाप्त करो, अटेंशन दो, बुराई बुराई के ऊपर तो अटेंशन है, लेकिन फियरत के ऊपर भी अटेंशन देना है। पसंद है ना, पसंद है, हाथ उठाओ, पसंद है तो सब पास हो जाएंगे, पसंद है तो पसंद चीज़

Ese era el tipazo.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बच्चे क्या करते, कोई कोई सब नहीं, जो वरदान मिला उस

結構

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ऐसे बीच बीच में 5 मिनट बिल्कुल अशरीपन का अनुभव करते चल, क्योंकि सब

सभी का अटेंशन, मेजर टीका मधुबन में

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस

0: बातों को समझकर चलना, परिवार में भी ठीक हो। और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो। सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, प्रजा तो बनती जाएगी, साधारण प्रजा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें लेकिन विनाश हो जाए कल परसों,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता।

0: bisa diitin mi. Pich mi ye. Apna chaat ji karo. Sarva khazane. Jama kitne ki.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस है। अच्छा, नीचे करो नीचे। तो बिजनेस वाले क्या सोचते हैं? खास आपको चांस मिला है, बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ। श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए अपनी राशि खजाने का मैं तो सुनाऊ। जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपन ने हम जिन्स कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा कैसे होगा, है चिंता? हाँ, नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा, नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो चिंता नहीं है। फिक्र में होंगे, निर्णय ठीक नहीं होगा तो एक दिन में क्या से क्या बन जाते, ये तो जानते ही हो। बेफिक्र होंगे, निर्णय अच्छा होगा और बच जाए, टचिंग होगी, अभी समय अनुसार ये करे या नहीं करे, इसीलिए फिक्र मारना, बिजनेस भी करना और अपनी स्थिति भी करना। तो सदैव ये याद रखो, बेफिक्र बात जाए, फिक्र की बात भी बदल जाए। हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त कभी नहीं, हिम्मत से बाप की मदद मिलती रही। बाप मदद के लिए बंधा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं, हिम्मत ही के मददगार नहीं। आप सोचेंगे बाप की मदद तो मिली नहीं, लेकिन पहले ये सोचो हिम्मत है, हिम्मत बच्चे की मदद बाप की। आधा शब्द नहीं पकड़ो, बाप की मदद तो चाहिए ना, लेकिन हिम्मत रखी, दिल शिकस्त न होकर हिम्मत रखते चलो तो मदद गुप्त मिलती रहेगी। तो बोलो कौन हो, बिजनेसमैन सभी बोलो कौन हो, कौन हो, बेफिक्र बच जाओ। हाँ बोलो, हाँ बेफिक्र बच, ये याद रखना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा।
4: बहुत लोग का निमंत्रण होता है पीछे तो सब कहेंगे
3: नहीं, उसमें भी जब देखो सकता है तो ना नहीं कर चल सकता है शरीर, कभी तो एकदम खराब होता है ना वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती, ये भी दवाई है। कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: हसी। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस 9 वर्ष को कैसे मनाएंगे, मुक्ति वर्ष मनाया, फेस्ट को समाप्त किया, तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना, तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहती है
3: just।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सब देखते हैं क्या क्या करती है, वो सारा ड्रामा देखते हैं। लेकिन बाप दादा बच्चों के प्यार पर निचावर भी होते हैं और ये भी बच्चों को दीवार पर शरारत करो। इसमें सोचते हो ना सबसे आगे थे आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है यहाँ, सरकारी दुनिया है ना, सरकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। तो सबसे सभी बहने तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनो में बैठे हो। नोरे रतनो सुना पीछे वालों ने, दूर नहीं हो समय को, शरीर पीछे बैठी है लेकिन आत्मा सबसे समय में। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा वालों को ही देखते हैं। देखो नजदीक वालों को इस स्थूल नैनो से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनो से नजदीक देखने का चांस नहीं है, इसलिए बाप दादा नैनो में संभाले था। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाता है। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में समस्या को पाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्रह्मांड जीवन की नेचुरल नेचर है, कौन स्वरूप सर्व शक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर्स है वो ब्रह्मांड जीवन की नेचर्स नहीं। कहते ऐसे हो जो मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर?
3: Wow.
2: नए जन्म में पुरानी नेचर पुराना सुबह कहां से इमर्ज होते हैं? तुम पूरे मरे नहीं है, थोड़ा जिंदा है थोड़ा मर रही है क्या? ब्रह्मा जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम है वो ब्राह्मणों का कदम। तो बाप दादा भाग्य को भी देख रहे हैं और इतना श्रेष्ठ भाग्य उस भाग्य के आगे ये बोल अच्छा नहीं होता। इस वाली मुक्ति वर्ष बना रही हो ना, क्या क्लास कराते हो मुक्ति वर्ष? है मुक्ति वर्ष? मुक्ति वर्ष है जो समझते हैं यही वर्ष मुक्ति वर्ष है वो हाथ लाओ ताली नहीं बजाना। अच्छा सभी हाथ उठा रहे। वायुमंडल में बैठे हो ना, खुशी में झूम रहे हो तो हाथ हिला देते हो। Bye. जाता है। युक्ति युक्त बोल, साधारण बोल भी Fly.

योग की शक्तियों का खजाना, दिव्य जीवन।

हमें चाहिए अगर पास विद ऑनर बनने चाहते हो तो हर खजाने का जमा खाता इतना ही भरपूर चाहिए जो 21 जन्म जमा करना।

Shh.

suami sama Faredi jodoh baca biar teachers biar kerana teachers itu samar panuhnya kemarinnya biar perverti vale biar sab Faredi aja sabi ko chance ये बहुत अच्छा बच्चों की तो काफी समय से आरी सीती तीना बच्चे हमको कब चांस मिलेगा मिलने तो अच्छा हुआ Faredi का गुलदस्ता बाप के सामने है बच्चे हाथ उठाओ जो बच्चे आए वो हाथ उठाओ अच्छा अच्छी तरह से हाथ हिलाओ दिखाई दे अच्छा अच्छे अभी नीचे करो नीचे नीचे करो बच्चों से तो बड़ों का प्यार होता ही तो बाप से भी बच्चों का प्यार और सभी बच्चे आज के ब्राह्मण हैं कल के क्या बनेंगे बोलो बच्चे कल क्या बनेंगे देवता बनेंगे अच्छा कौन सा देवता बनेंगे पता है बच्चों में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज सम्राट बाप अपने स्मृति स्वरूप सम्राट स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात शनि के दिन में शनि में समय रहे ऐसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
2: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मालिक सदा मालिक होता है।
3: कितने वर्षों से जुड़ा
2: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
3: मेरे ऊपर निर्भर है, उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। जो मेरे ऊपर निर्भर है
2: वो अभी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Oh, shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो, मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कर्पणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा संबंध द्वारा चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए, तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वारिस की भाषा तो समझते हैं, समझते हैं ना, जो धन से मन से सहयोग से सबसे नंबर वन हो और हर कार्य में हर समय एवरेज हो, इसको कहा जाता है वारस। जिस समय बुलावा आवे उस समय हाजिर हो जाए, इसको कहा जाता है वार्स क्वालिटी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोग ही सुनाते हो कि बहुत

0: नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं गए, और बहुत काल का अभी का सुख अभी की श्रेष्ठ स्थिति उसे भी वंचित हो जाते। इसलिए क्या करना है, बहुत काल करना है पीछे वाले करना है, हाथ उठा रहे, बहुत अच्छा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: नंबर 1 पाई ब्रह्मा ने पाई।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

So

时间算入里，叫阿个算命的钱。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कहीं बच्चे

0: anillo.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सिक्किया सिर्फ सिक्किया नहीं, तो अगर सिक्किया देती भी है, देने पड़ते भी है, लेकिन किम्या और सिक्किया, किम्या रूप बन के सिक्किया दो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, आपका मर्सीफुल रूप अवश्य सिक्किया का फल दिखाएंगे। देखो आजकल साइंस वाले भी पहले ऑपरेशन करते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं, पहले ही नहीं काटते हैं, टिंचर भी लगाते हैं, पहले फूंक देते हैं, फिर टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले मर्सीफुल बनो, फिर सिक्किया दो, तो प्रभाव डालेंगे। नहीं तो क्या होता है, आप सिक्किया देने लगते हो, वो पहले ही आपसे ज्यादा सिक्किक है, तो सिक्किक सिक्किक की सिक्किया नहीं मानता। जो पॉइंट आप देंगे ऐसे नहीं करो ऐसे करो, उसके पास कट करने की 10 पॉइंट्स होंगे। इसलिए किम्या और सिक्किया साथ साथ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

छोटी छोटी बात में।

Siapkan air.

0: सेवा कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक मत होना अर्थात सफलता, सफलता आप बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध कार्ड, उसको यूज कर।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yes.

Esse samba é bom.

0: tomado quebret. Shopauna. Shopkamna. Kivrti. Or Trishti.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा, भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों की भोजन खिलाया, कुछ किया, समझते बड़ा पुण्य हो गया। लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा है। ब्रह्मा भोजन का यज्ञ का कणा बहुत वैल्यूबल है।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा चारों की लकी और लवली बच्चों को देख रहे Snake।

Sunny. Que assim.

Yes.

0: Conserva chatoncé. Samrat ban gaye. Master. Sarvashaktivan. Atmay ban gaye. Aise sampann atmaon ke dil se kya geet nikalta apraapt nahi koi vastu hum brahmanon ke khazane se.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया के हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीन ही बातें हैं, तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अनुभव किए है ना, पुराने जो पहले पहले आए है उन्होंने अनुभव कर लिए, कभी भूखे रहे और ये जो गुण है ना उसको पोरन बीटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाता था। और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते हैं, सबका पेट भर गया। पोरन बीटा बनाने आते हैं, ऐसी भी हालत हो, ये गुर सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, ये पोरन वीटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ, सभी यहाँ सीख के जाना। आई वेल में ये पोरन वीटा बहुत काम में आए। चार बातें याद करना, ऐसे नहीं एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। इसलिए चेक करो, चार ही बातें हैं, सच्चाई की, दिल की सच्चाई। दिल बड़ी, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वो पूर्ण हो ही जाती है। करके देखो, जहाँ दिल बड़ी है ना वहाँ सब इच्छाएं पूरी हो जाती। दिल छोटी करेंगे तो सामग्री सब छोटी हो जाती।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Chuck.

0: לשרקו. מברמן סופליסטאו. चलते फिरते फरिश्ता रूप फरिश्ता स्वरूप तो अच्छा लगता है ना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और पाप के लिए है क्या? परम आत्मा के लिए है, आत्मा है, नंबर वन आत्मा है तो है। स्वयं बच्चों के याद के पाप रह नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: खुशी से

0: शब्द खत्म कर दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे कभी कभी नहीं भी करते हैं।

0: बच्चों का ही तो गायन है, हर कलप की है। तभी गायन है क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को मेरी कहते हो, वैसे ही मन को भी मेरा कहते हो। मेरा कहना अर्थात मालिक बनो, मन में जो संकल्प करने जाओ जितना समय वो संकल्प करने जाओ,
1: इस

0: जाओ योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सदा बाप के कंबाइंड रहना पड़ेगा। कोई भी मुश्किल आए पहुंचावे तो बाप को देने आता है। तो बेफिक्र बच्चा बन उड़ते रहेंगे। दिल में बोझ नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं एक मास हो गए, 15 दिन हो गए, चलता ही रहता है। और उस 15 दिन में अगर आपका काला जाए तो उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो। लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे, देना सीखा है। बच्चों का बोझ लेने के लिए कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है? वो हाथ उठाओ। हिम्मत रखे हाथ शरीर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बाप दादा ने देखा कि अगर ब्रह्मांड मिलके कोई भी एक संकल्प करे तो वही पर, लेकिन सबका एक ही संकल्प हो तो समझ में आया है कि ये कुछ कर रही है, और जो कहती है वो अच्छा कहती है, कर सकती है। अभी इतने तक चीज आई है, इसलिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हर एक बच्चा

ये आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन पापा को सभी का आवाज पहुंच रहा है। बाप दादा भी रेस्पान में उसकी कमाई।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देंगे

ये वाह वाह शब्द भूलना नहीं।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे कहते हैं हम तो बहुत सेवा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राप्ति इतनी नहीं होती है। उसका कारण वरदान सबको एक है कि दूसरा दूसरा एक ही है ना। 60 साल वालों को भी एक, तो एक मास वाले को भी एक ही। खजाने सभी को एक जैसे, पालना सबको एक जैसे।

Choose.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Be happy.

और सभी संकल्पों से दूर कर एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में

Síganme, la Gaia. Acha, api. Sarı dedi.

0: सफलता मिली। क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है लेकिन अपने अपने स्थान में रहते। सिकन में भी दो स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये अभ्यास कर क्योंकि बाप दादा ने बता दिए जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये एक सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान पे रिपोर्ट टीचर को लिख के देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है सभी के क्लासेस में ये होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप किससे योग्य।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेहद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अबे संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताए, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वाह मेरा परिवार।

Se toca, corse gratis.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो सदा बाप के संबंध, कितने संबंध है, कभी बाप कभी बच्चा भी बन जाता है। कभी बाप तो सखा भी बन, इसलिए यह संबंध याद करो, यह प्राप्तियां याद करो। प्राप्तियां और संबंध जैसे आज दिल से याद कर रहे हो, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है, सदा मुश्किलता हुआ चेहरा, कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी दो शब्द याद करो, माया से इशारा करो गेट आओ और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है अब तो खर्चा नहीं, घर के नजारे

0: Kjellin, har jeg kjempere til fetisj av kjellin.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सोचो आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रियलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती। उस चमक की रियलिटी पर्सनल
2: बने हो, देवताएं बने हो, अच्छा सुन वाले।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।